आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ए घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

जाते। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: हंसो मत, बोलो।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लौट आए

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

हम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती। सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल

0: बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

नमस्ते एंड सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे दीवाने और दीवानियों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। बिल्कुल मस्ती करने वाले हैं एक से बढ़कर एक गानों के साथ, लेकिन पहले मेरी पसंद एंजॉय कीजिए भाई, आते हैं इस गाने के बाद आपका वेलकम कर रहे हैं।

बिल्कुल पहली बार आया है और वैसे आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आप सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। सभी का मैं एक साथ ही वेलकम करता हूँ और प्रोग्राम का आगाज करता हूँ इस गाने के साथ और इस गाने के में अंतर में, जैसे कि मैं बता दूं कि दो राउंड होते हैं हमेशा की तरह, तो आज भी दो राउंड होने वाले हैं और जो थर्ड राउंड होता है उसमें स्पेशल कॉल किया, तो स्पेशल कॉल किया जाएगा जो दोस्त ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए। लेकिन मैं बता दूं कि जो यानी कि पहला लाइन जो राउंड होता है उस राउंड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंतरे में जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों से आपको गाने की पहचान करके अपने कोई भी गाने को भेजना है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, जो व्हाट्सएप नंबर है 9135841232 पे। तो लेट्स प्ले नाउ।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में जो भी शब्द आप सुनेंगे, उन शब्दों से जो गाने आपको याद होंगे, उन गानों के आप लिख के भेजिए 9135841232 पे या 9935842312 पे।

0: सच में बहुत प्यारा है ना, मुझे भी बहुत प्यारा है। वैसे बहुत सारे मैसेज भी आए हुए हैं भाई। सबसे पहले ज्योति खटवड़े जी, संध्या पटेल जी, सुनील कुमार जी, एमडी फैज जी, जितेंद्र जी, सर्वेज भगत जी, संजय जी, सरफराज जी, संतोष गौंड जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं आज के फर्स्ट कॉलर, लकी कॉलर ज्योति खटवड़े जी को। बहुत बहुत बहुत बहुत वेलकम है आज के लकी कॉलर बनने के लिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो। कैसी हैं ज्योति खटवड़े जी?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो एकदम बहुत ही बिंदास हूँ, मतलब झक्कास हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, है ना। और आज से मतलब आज अब से एक हफ्ते बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। और कैसी थी?
1: हाँ।
0: और क्या कर रही थी आप?
1: हाँ। कुछ नहीं, बैठी थी, खेल रही थी।
0: अच्छा।
1: मेरा फेवरेट शो है ना।
0: हाँ हाँ, मुझे पता ही आपका फेवरेट शो है।
1: हाँ।
0: तो बाकी शो में दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल।
1: बहुत देर लगता है ना सॉन्ग सुनाने में, इसलिए मैंने छोड़ दिया।
0: अच्छा, ओके।
1: बहुत वेट करना पड़ता है।
0: अरे तो क्या करें, कभी कभी वेट कर लिया कीजिए ना। आखिर ऐसे भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं और वैसे भी इंतजार करते हैं। तो जब थोड़ा सा अगर जब आप यानी कंप्लीट शो सुन ही रही हैं, तो स्टार्टिंग की बात है कि या तो यानी पहले प्ले हो या बाद में प्ले हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो सुन रही है ना, है कि नहीं? ओके, खैर बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनकर लाई है आप?
1: तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे।
0: हाय, सच में तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। एंजॉय कीजिए, सुना दिया, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेंगे।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतर में आए शब्दों से, यानी जो भी आप सुनेंगे वर्ड्स, उन शब्दों से आप मुझे जो गाना याद होगा आपको वो लिख भेजेंगे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

और बहुत से मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहला मैसेज की है आरजे वंशिका जी, ज्योति खटवड़े जी, सुनील कुमार जी, आरती तिवारी जी एंड सुनीता गोप जी, अनामिका जी एंड संजय साहनी जी, सर्वेश भगत जी, जितेंद्र जी, सर्वेश क्या नाम है, सरोजी शेट्टी जी, मोहन निवारी जी, फैज जी, नंदनी मजी, रामके जी, मतलब बहुत से दोस्त। अभी सबका मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी। फिलहाल कॉल लगाते हैं

0: आरजे वंशिका जी, बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
1: जी थैंक यू सो मच जी।
0: वेलकम जी, कैसी हैं जी?
1: जी बहुत अच्छी हूँ और कार्यक्रम बहुत प्यारा चल रहा है, गाने बहुत ही अच्छे चल रहे हैं।
0: आप सभी अच्छे अच्छे गाने भेजेंगे तो अच्छा अच्छा अच्छा प्रोग्राम होगा ही ऑटोमेटिक, है कि नहीं? और तब ये श्रोताओं के प्यार और उनके मतलब उन पर डिपेंड करता है।
1: जी बिल्कुल, वैसे ओपनिंग सॉन्ग भी दोनों बहुत ही प्यारे रहे।
0: ओके थैंक यू सो मच। तो आप कौन सा सॉन्ग लेकर आई हुई हैं अंतरा के शब्दों से निकाल कर?
1: जी सुनना चाहूंगी कभी ये ना पूछना कि कितनी मोहब्बत करते हैं।
0: वाह बहुत प्यारा गाना है, उदित अनुराधा पौडवाल की आवाज में। इंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिख के भेजे जल्द से जल्द 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

चलने। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ मैसेज। और सबसे पहले जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है सुनीता गोप जी एंड अनामिका जी का, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और उनके बाद है हमारे संजय सहनी जी, ज्योति खरवड़े जी और इसहाक हुसैन जी, मनीषा शर्मा जी, जितेंद्र जी, एमडी फैज जी, काजल जगा जी, सर्वजीत सेठी जी, संध्या पटेल जी, सुनील कुमार जी, अशोक पाल जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज है। सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन कॉल लगा रहा हूँ सीधे सुनीता गोप जी को, अनामिका जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। कैसी हैं?
1: ठीक है सर।
0: क्या कर रही हैं? सुनीता जी
1: चाय पी रहे हैं।
0: मुझे पता है। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं?
1: हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम।
0: कौन हो तुम? इंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू हो चुका है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 यानी 9135841232 यानी 9135841232 पे।

0: और हमारे यानी कि मेल हजरात क्या कर रहे हैं, ये पीछे क्यों हो रहे हैं भाई, आप लोग पीछे मत होइए। देखिए सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है आरती तिवारी जी का, और संजय सहनी जी है, आरजे वंशिका जी है, ज्योति जी है, सुनील कुमार जी है, सुनीता गोप जी है, अकबर खान जी है, फैज जी है, जितेंद्र जी है, सर्वे जी है, मनीषा जी है, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए है। लेकिन मैं कॉल लगाने वाला हूँ आरती तिवारी जी को। आरती जी बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। लेकिन
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग। और सुना है आप शायरियाँ बहुत करती हैं, कुछ सुनाइए ना प्लीज।
1: अब पहले का लिखा सुना सकते हैं क्योंकि आप जस्ट तुरंत कैसे सुना सकते
0: हैं, यानी पहले का ही सुना सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ये थोड़े कह रहा हूँ कि अभी लिखिए अभी सुनाइए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि सुना है कि आप शायरियाँ बहुत अच्छा अच्छा करती हैं जी।
1: बस कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे बस।
0: हाय, आपकी कोशिश कामयाब हो जाती है।
1: थैंक यू।
0: वेलकम जी। तो पहले आपकी मैं शायरी सुनूंगा फिर आपके गाने पे आऊंगा।
1: ओके। अपनी सादगी हुस्न से वो कहर जाती है।
0: हाय।
1: ये आपकी तरफ से आपकी सुंदरता जिसके लिए।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
1: अपनी सादगी हुस्न से वो कहर ढाती है, नशीली आंखों से दिल चुराती है, आपका
0: अच्छा अच्छा।
1: हाय क्या बोलूं उसकी तारीफ में, हाय क्या बोलूं उसकी तारीफ में, वो सुरीली आवाजों से होश उड़ाती है।
0: हाय क्या बात है, क्या बात है, आपने तो मतलब बहुत ही प्यारा बोल दिया है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जिंदगी में रौनकों की वजह तुम, मेरे ख्वाबों में ऊपरियों की जगह तुम हो, जिस आईने में खुद को रोज संवरती हो, उस आईने की खूबसूरती की वजह तुम हो, है कि नहीं।
1: वैसे क्या बात है?
0: वैसे ये मुझे बता दीजिए कि अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप
1: जी? गाना है, एक मिनट में बता दूं, दिल मेरा दिल प्यार का दीवाना।
0: या ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये बताइए कि मतलब यानी कि नया वाला सुनिएगा या पुराना वाला,
1: आपको जो अच्छा लगे वही सुना दीजिए, हम तो दोनों सुन लेंगे क्योंकि नहीं, हम तो अक्सर अधिकतर पुराने वाले ही सुनते हैं।
0: चलिए तो पुराना वाला ही सुनाते हैं क्योंकि भाई हम किसी
1: पुराना वाला ही प्ले कर
0: निराश नहीं करते,
1: और ये गाना आपके साथ सभी दोस्तों को।
0: थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए।
1: ओके
0: गजानन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और एक बार और मैं बता दूं कि कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे, नाम है कुछ दोस्तों के, मुबारक हुसैन जी, ज्योति खड़बड़े जी, नंदनी माँ जी, आरिफ सिंधी जी, सरफराज पटेल जी, सुनीता गोप जी, संजय साहनी जी, सर्वजीत सेठी जी, अशोक देशमुख जी।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं। याद रहे कोई एक ही, ऐसे बहुत से लोग हैं कि एक ही गाने को बार बार भेजते हैं, ऐसा नहीं करें क्योंकि वो आपका नाम भी नहीं है अगर सबसे पहले आप मैसेज भेजते हैं। इसलिए इस अंतरे में जो गाना प्ले हो रहा है उस गाने के अंतरे में जो शब्द आए उन शब्दों से ही गाने भेजने हैं, और वो गाना अगर आपका सबसे पहले आता है तो मैं जरूर आपको कॉल लगाने वाला हूँ।

0: और लेकिन मैसेज मेरे पास सबसे पहले इस बार फिर आया हुआ है आरजे वंशिका जी का, एंड सेकंड है सुनील कुमार जी, संतोष गौंड जी है, एंड संजय सहनी जी है, ज्योति खटवड़ जी, मनीषा शर्मा जी, रामके जी, जितेंद्र जी, एमडी फैज जी, सरोजी शेट्टी जी, गजानंद जी, सुनीता गोप जी, सर्वेश बगा जी, राजेश जी, संध्या जी, अकबर खान जी, अशोक पाल जी, मतलब बहुत से, ओ माय गॉड कितने दोस्तों के मैसेज है। लेकिन कॉल लगाने वाला हूँ सीधे आरजे वंशिका जी को। एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आरजे वंशिका जी, जल्दी नंबर लग गया आपका।
1: जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, लग रहा है कि पूरा जोर शोर दी हुई है खेलने पर, ध्यान दे दिए एकदम।
1: जी बिल्कुल, आज इसी में लगे हुए हैं क्योंकि अच्छा चल रहा है, आप मन कर रहा है कि पार्टिसिपेट करते ही जाएं।
0: हाँ, तो एक बार और पार्टिसिपेट कर सकती है क्योंकि आप तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। जी बता दीजिए जल्दी से, आंसर के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है आप?
1: जी धड़कन मूवी का है, दिल ने ये कहा है दिल से।
0: अच्छा जी, सुनवा दिया, एंजॉय द ट्रैक।

0: हल्का मचा दिया, माय गॉड, मतलब मनीषा शर्मा जी, आरजे यानी सोनी जी, ओहो क्या बात है, और रामकेश जी, आरती तिवारी जी, एंड गजानन जी है, सुनील कुमार जी है, सरफराज जी है, अकबर खान जी, ज्योति जी है, एमडी फैज जी है, जितेंद्र जी है, रुबीना नाथ जी है, एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, ये प्रभात रंजन जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रभात रंजन जी, और सर्वेश भगत जी है, रूपचंद गोयल जी है, पूजा भास्कर जी है, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज है, सभी का नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सॉरी, सीधे कॉल लगाने वाला हूँ मनीषा शर्मा जी को। मनीषा जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
1: धन्यवाद अनिल जी।
0: कैसी हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी, और कैसी हैं आप?
1: ठीक है अनिल जी।
0: ओके जी, आज तो फीमेल
1: ने, आप ठीक हो?
0: मैं तो एकदम झक्कास हूँ, आज तो फीमेल ने झंडा गाड़ दिया है, वाह, लग रहा है कि आज मेल को आगे बढ़े नहीं देना है।
1: जी जी,
0: ओ माय गॉड,
1: लेडीज फर्स्ट,
0: आज तो मानना पड़ेगा, मतलब उन लोग का नंबर ही नहीं आ रहा है, तब आप ही लोग का नंबर आ रहा है, भाई क्या बात है, छा गई आप लोग आज।
1: जी जी।
0: अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुन के लाई है बताइए।
1: गाना है दिल इबादत कर रहा है,
0: धड़कने मेरी सुन, आए सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू होता है इस गाने का अंतरा। तो इस गाने में जो भी इस अंतरे में जो भी शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, उन शब्दों से जो गाना आपको याद होगा वो गाना आप मुझे लिखकर भेजें 9135841232 पे, यानी 9135841232।

ओह माय गॉड, आज क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इस बार भी बाजी मारी है आरजे वंशिका जी एक नंबर में, दो नंबर में आरजे सोनी जी हैं, एंड तीन नंबर में ज्योति खडवाड़े जी, चार नंबर में संजय साहनी जी हैं, और उनके पास है हमारे ये संतोष गौड़ जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, फैज जी हैं, नीलेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सर्वेश जी हैं, अकबर जी हैं, सर्वजीत जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं, लेकिन

0: क्या बात है जी, आज तो आज फर्स्ट विनर बन गई, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: थैंक यू जी, मेरा नंबर लग गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
0: हाँ जी, सच में नंबर लग गया है। बताइए, तो अभी कोई गाना सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड बार, मतलब जिनका थर्ड टाइम नंबर लगता है, वो कोई भी गाना सुन सकते हैं। तो बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगी फेरू ना नजरिया करके गाना है, वाला मूवी का।
0: वो तो मेरा फेवरेट गाना है, मैंने कल प्ले किया था। इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू जी।

0: और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले इस बार बाजी मारे हैं संजय साहनी जी। ओ माय गॉड, संजय साहनी जी बहुत बहुत बधाई हो भाई, मेल में अभी नंबर लगा हुआ है। उसके बाद ज्योति खटवाड़े जी, मनीषा जी, अकबर खान जी, सुनीत और यानी कि पूजा भास्कर जी, सुनीता गोप जी, एमडी फैज जी, सुनील कुमार जी, रूपचंद जी, अशोक पाल जी, संध्या जी, सर्वेश जी, सर्वजीत जी, मतलब बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया है, लेकिन कॉल लगाने वाला हूँ मैं। संजय साहनी जी को रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। संजय साहनी जी बहुत बहुत बधाई हो, मुझे लगा कि आज लेडीज ही आगे आएगी, मतलब कोई जेंट्स आने वाला नहीं
1: है। हालांकि सर मैं बहुत व्यस्त, अभी मूल्यांकन कॉपी का बैठ के घर में माध्यमिक का कर रहा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: और लेकिन इसमें भी आपका कार्यक्रम तो मतलब चार चांद लगा दिया मेरा मूल्यांकन करने में। अच्छा। इतना अच्छा लग रहा था, एक हाथ से कॉपी भी जांच रहा हूँ सर, एक आपका कार्यक्रम भी सुन पा रहा हूँ।
0: ओ माय गॉड। और उसमें आपने सबसे पहला मैसेज भेज दिया, वाह क्या बात है, गजब है ना। ओहो क्या बात है, मनना पड़ेगा।
1: आप सब कैसे हैं सर?
0: एकदम झकास है, बहुत ही झकास है, बहुत ही अच्छे, मतलब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है।
1: बिल्कुल सर, सहयोग आशीर्वाद के, आप लोग तो मैंने एक नया जीवन प्रदान कर दिए हैं ये रेडियो जगत में, ऐसा आप जैसे प्रोग्राम लाके सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: जी जी, काली तेरी चोटी है, परांदा
0: तेरा लालनी जी, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को
1: जी। ओके ओके ओके।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। इस अंतरे में आप शब्दों को ध्यान से सुनिए और इन शब्दों से जो गाना आपके जहन में आता होगा उसे लिख भेजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 यानी 9135841232।

0: always gone.
1: मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले अमीना खान जी, उनके बाद है यानी कि प्रियंका जी। बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी आपका। ज्योति खटवाड़े जी, सुनील कुमार जी हैं एंड संजय सहनी जी हैं, यहाँ पे सुनीता गोग जी हैं और जितेंद्र जी हैं, सर्वेश भगत जी एंड सर्वजीत शेट्टी जी, नंदनी माँ जी, अशोक देशमुख जी, पूजा भास्कर जी, अनिल कश्यप जी, मतलब बहुत से दोस्त। कॉल लगाते हैं सीधे। बहुत बहुत वेलकम है अमीना खान जी, आते ही छक्का लगा दिया आपने। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बहुत ही झकास, बहुत ही बिंदास, बोले तो फर्स्ट क्लास।
2: हाँ, वो बोलते हैं आप, बानी वानी क्या रहता है वो समझ नहीं आता, रोला पत्ती क्या रहता है वो?
1: मतलब
2: जो आप बोलते हैं ना एकदम लास्ट में, आप भोजपुरी में।
1: अच्छा,
2: एकदम छकाछक।
1: समझ गया। मतलब एक्चुअली वो मैं यूं ही बोल लेता हूँ थोड़ा सा हंसने हंसाने के लिए।
2: नहीं, अच्छा लगता।
1: हाँ वही। भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, मतलब वो भी एक तरह का वो शब्द ही है
2: वो, हाँ। लास्ट में जो हाँ बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है।
1: ओके, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। एक्चुअली वो मैं मतलब कहता ना झक्कास, मतलब मतलब एकदम एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास, समझ लीजिए है ना,
2: बिंदास।
1: यानी बोले तो अगर बोले तो महाराष्ट्र में लय भारी। यस,
2: मराठी में झिंगाट। एक वर्ड और एक है झिंगाट,
1: मतलब
2: हाँ झिंगाट, नहीं झिंगाट नहीं सॉरी, हाँ झिंगाट, मराठी वर्ड है
1: एक झिंगाट वाला, झिंगाट वाला एक ठू मतलब गाना भी है,
2: झिंगाट
1: गाना भी है, मैंने उसको सुना भी है।
2: वही प्ले कर दीजिए अभी।
1: नहीं अभी मैं वो नहीं प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि अभी जो आपका गाना है गाने के साथ जो आया है मैं उसी को प्ले कर पाऊंगा।
2: दावत ईद के, अच्छा
1: नहीं
2: जी,
1: जो आपने भेजा है दिल दिया गल, कौन सा दिल दिया गल्ला।
2: हाँ जी, अच्छा मैं जब तीन बार जीतूंगी तो फिर मेरी पसंद। हाँ याद आया,
1: हाँ बिल्कुल
2: याद
1: आया। यस,
2: चलिए आज को तो दिन बन गया, वंशिका जी से भी बात हो गई, आपसे भी बात हो गई, मतलब बोले तो एकदम झकास
1: झकास। यस, आप सीख गए ना, देखो तो
2: जी जी जी जी।
1: तो मैं आपका गाना प्ले कर दूं?
2: जी बिल्कुल।
1: ओके, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक। वेलकम जी।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिख के भेजें मुझे 9135841232 पे। और अमीना खान जी, आपकी पसंद थोड़ा हट के होती है, यूनिक होती है, अच्छा लगता है।

0: ओके, इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है यानी पूजा भास्कर जी का, ओके जी, और उनके बाद यानी कि प्रियंका जी, ओ माय गॉड, बहुत थोड़ा सा और यानी कोशिश कीजिए प्रियंका जी, आपका नंबर लग जाएगा बिल्कुल। और हमारी शाहक हुसैन जी, ज्योति जी हैं, एंड मनीषा जी हैं, संजय सहनी जी हैं, एंड सुनील कुमार जी हैं, और सर्वेश भगत जी, इमरान जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज है, ओ माई गॉड, बहुत ज्यादा। ओके जी, और फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं पूजा भास्कर जी को, ये लिखते हैं कि कॉल मत कीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ। ओके जी, कोई बात नहीं, मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ और टेंशन मत लीजिए, तेरे लिए। ओके जी, तो तेरे लिए आप पता नहीं किधर है, मिल जाए जल्दी से। ओके, नहीं ये नहीं है, तेरे लिए।
1: जागी जागी सोई नाम सारी रात, तेरे लिए।
0: ये भी नहीं है,

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्द से आप मुझे गाना लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है।

मेरे पास इस बार सबसे पहला मैसेज पहुंचा है गजानन सलोकार जी का। ओहो, गजानन जी के बाद है यानी प्रियंका जी, ओके, और उसके बाद इसहाक जी और सुनील कुमार जी, संजय साहनी जी, ज्योति खटवर जी, मनीषा शर्मा जी, सुनीता गोप जी, जितेंद्र जी हैं और सर्वेश भागा जी हैं, रूपचंद गोयल जी, अशोक देशमुख जी, सर्वेश क्या नाम है, सर्वजीत शेट्टी जी, इमरान भाई जी भी है, संजय पटेल जी हैं, अजय कुछ जी है, मतलब ओ भाई गॉड, इतने सारे मैसेज, मैं क्या बताऊं, सभी का नाम तो शामिल करना पॉसिबल नहीं है। कॉल लगाते हैं सीधे।

0: बहुत बहुत वेलकम है गजानन सलोकार जी। हेलो, नेटवर्क ही फेल है इनका। हेलो हेलो गजानन जी, आवाज आ रही है मेरी?
1: हाँ बोलिए।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका, कैसे हैं? ओ माय गॉड, कोई नहीं, गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ। हेलो,
1: हाँ करिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम।
0: जी जी बिल्कुल, सुनवा दिया। बहुत बढ़िया किताबें मैंने,

क्या क्या बताएं हम। और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से गाने लिख के भेजे मुझे 9135841232 पे। आप सोचिए आपको कैसे क्या करना है। अभी जो यहाँ से ये जो अंतरा अभी प्ले होने वाला है, इस अंतरे में जो भी शब्द आ रहे हैं इनको ध्यान से सुनिए और जो भी गाने आपके ध्यान में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, उसे लिख भेजिए। आसान है बहुत।

और इस बार बाजी मारी है यानी प्रियंका जी। सच में इनका अब नंबर लग ही गया है, बहुत देर से ये ट्राई कर रही हैं। एंड उनके बाद ज्योति जी हैं, मनीषा जी हैं, अजय कुछ जी हैं, इसहाक जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, शमशाद जी हैं, एंड यानी कि हमारे गजानंद जी हैं, इमरान जी हैं, जितेंद्र जी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सर्वजीत शेट्टी जी हैं, एंड सर्वेश भगत जी हैं, रूपचंद जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, एंड यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं। ओ माय गॉड, मैं किनका किनका नाम लूँ यार, मुझसे अब नहीं लिया जाएगा इतना ज्यादा नाम। सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, फिलहाल कॉल लगाता हूँ प्रियंका।

0: बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉट स्टार के अंतरा मस्ती में।
1: गुड इवनिंग। आप कैसे हैं?
0: मैं तो एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चक्का चक।
1: बस बस हम भी बहुत बढ़िया हैं। हम कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं सर
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आज अब फर्स्ट टाइम जुड़ रही
1: हैं। रेडियो सुनने का भी बहुत शौक है।
0: अच्छा शौक है तो इसलिए ना आप सुन रही हैं।
1: अच्छा। नहीं जैसी उन्होंने ट्यून चली ना कि ला ला ला तो समझ गए कि ये कौन सा गाना गा रहा है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने और उसमें चेहरा का आएगा ही शब्द।
0: बिल्कुल चेहरा तो आने ही वाला है और चेहरा आ भी गया था। बिल्कुल आपने सबसे पहले भेज दिया तो अब बताइए आप
1: सर, हमारा नंबर आया
0: जी। बिल्कुल जैसे जैसे आएगा मैं तो आपका नाम लूंगा ही। और बताइए कि अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप और कब से सुनती हैं रेडियो हॉटस्टार?
1: चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना।
0: गाती भी अच्छा है।
1: सुन तो, लेते हैं सर, तो हमें शौक है, रेडियो काफी समय से सुन रहे हैं सर।
0: तो ये रेडियो हॉट स्टार कब से सुनती हैं ये बता दीजिए
1: सर। मिनिमम मतलब कम से कम दो तीन साल तो हो गए हैं।
0: अच्छा
1: ऐसा कुछ भी नहीं है। गाने तो, अच्छी मतलब 90s पसंद है सर।
0: चलिए अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक। बहुत ही प्यारा गाना है। वेलकम जी।
1: थैंक यू।

0: और इस बार बाजी मारे हुए हैं हमारे अनिल कश्यप जी। अच्छा जी, ये बात है। और उनके बाद आरजे सोनी जी हैं और उनका भी वेलकम करते हैं। और ओ माय गॉड, रिकॉर्ड तोड़ मैसेज आए हुए हैं बहुत सारे दोस्तों का। यहाँ पे संध्या पटेल जी हैं और एक साहब क्या नाम है इनका जी, मुझे इनका नाम तो नहीं दिख रहा है, क्या नाम है, नाम है अमरदीप जी। अमरदीप जी, अमीना खान जी, सहाग जी, ज्योति जी, शमशाद जी, गजानंद जी, सुनील कुमार जी, रुबीना नाथ जी, मनीषा शर्मा जी, रविंदर जी, सर्वजीत जी, और यहाँ पे सुनीता गोप जी है, और जितेंद्र जी, इमरान भाई जी है, सर्वेश भगत जी है, अफ्ताब जी है, रूपचंद जी है, एमडी फैज जी है, मतलब ओ माय गॉड, सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन सीधे कॉल लगाते हैं अनिल कश्यप जी को। अनिल कश्यप जी, रेडियो हॉटस्टार के अंतरा मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम तो एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक हैं एकदम। आप बताइए।
1: एकदम एकदम हॉट स्टार पे स्टार।
0: एकदम एकदम एकदम बिल्कुल। आज कैसे कैसे अब समझ में आ गया अंतरा मस्ती का संबंध?
1: जी जी, खुशी का।
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
1: सुन रहा हूँ।
0: अच्छा सुन रहे हैं ना।
1: बट हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी ज्ञान नहीं है इसका, कैसे चल रहा है प्रोग्राम।
0: एक्चुअली यहाँ पे हर दिन अलग अलग प्रोग्राम होता है, हर दिन।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल।
1: तो, मतलब क्या बताऊँ, बहुत खुश हूँ।
0: अच्छा क्या बात है भाई।
1: अभी थोड़ी देर पहले मैं सुनते हुए आम खा रहा था, लेकिन आम से भी ज्यादा खुशी अभी मिल रही है।
0: होता है भाई, होता है, बिल्कुल होता है। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: वही आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं।
0: आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है
1: जी। और सर इतना मीठा गा कैसे लेते हैं?
0: अरे यार मैं कहाँ गाता हूँ यार, बस थोड़ी थोड़ी सीख
1: रहा है आम खा के आती है।
0: नहीं मैं आम नहीं खाता हूँ ना जाना, मुझे आम पसंद नहीं है उतना। बस आम खाता हूँ तो सिर्फ एक देसी मालदे खाता हूँ, और उसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं खा पाता।
1: वही मैं भी खाया हूँ, तब तो बन गई हम दोनों की।
0: क्या बात है, चलिए एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक।
1: और सर एक सेकंड, एक सेकंड।
0: हाँ हाँ हाँ बोलिए।
1: जितने लिसनर्स कोने कोने से देश के जुड़ रहे हैं, सभी को मेरा मतलब प्रणाम है, और सारे लोग एंजॉय करें इस ट्रैक को।
0: ओके जी, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक।

और एक बार फिर से बाजी मारी है यहाँ पे प्रियंका जी, ओ माय गॉड, लगता है कि इन्हें बहुत जानकारी है गानों की और आते ही छा गई है, गाना भी इनका बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये गाती भी बहुत अच्छा है। और यानी कि प्रियंका जी के बाद है यहाँ पे संजय पटेल जी, इशाक हुसैन जी, शमशाद जी, ज्योति जी एंड सुनीता गोप जी, इमरान भाई जी, एम डी फैज जी है, सर्वेश भगत जी है, अफ्ताब आलम जी, सर्वजीत सेठी जी, रूपचंद जी, जितेंद्र जी, रूबीना नाथ जी, बहुत से दोस्त के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं और इसीलिए कॉल लगाते हैं सीधे यानी कि प्रियंका जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से इन प्रियंका जी, क्या बात है, छा गई आते ही।
1: अंताक्षरी में सर हमसे कोई नहीं जीत सकता।
0: हमें लग रहा है कि नहीं जीत सकता है कि नहीं?
1: नहीं, वाकई में बहुत शौक है सॉन्ग का सर, इसलिए आप हमें आपके प्यार में हम सवरने लगे। राज मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, एकदम सुनाएंगे आपको, बिल्कुल सुनाएंगे।
1: कितनी बार गाने सुन सकते हैं
0: जी?
1: कितनी बार मतलब अपन मैसेज कर सकते हैं?
0: यहाँ पे 3 बार पार्टिसिपेट कर सकती हैं और 3 बार जब यानी विनर बनिएगा, अगर फिर आपका नंबर आएगा तो अब आप यानी किसी और को रिकमेंड करेंगे वो चलेगा, लेकिन मैंने जितना बचा है उतना बार खेल सकती हैं, लेकिन यानी विनर, लेकिन यानी 3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ये चीज है।
1: हाँ जी। अच्छा, फिर कल नेक्स्ट डे कल आएगा तो फिर कल ही कर सकते हैं?
0: हाँ, फिर इसके बाद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 बार चांस दिया जाता है लास्ट। ओके
1: सर, एंजॉय कीजिए।
0: ओके।

ओके, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी का आया हुआ है, जितेंद्र जी, उनके बाद ये गजानंद जी हैं, अमीना खान जी हैं, प्रियंका जी हैं, और ये वंशिका जी हैं, ज्योति जी हैं, नीलेश जी हैं, रविंदर जी हैं, इमरान जी हैं, आफ्ताब जी हैं, सर्वजीत जी हैं, सर्वेश जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, रूपचंद जी हैं, फैज जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं। कॉल लगाते हैं जितेंद्र जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है आपका
1: जी। सर नमस्ते। सर
0: नमस्ते जी, और कैसे हैं
1: जी? सर बोलिए।
0: अरे आप बोलेंगे ना कैसे हैं
1: जी? सर अच्छे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर।
0: अच्छा जी, ओके जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। गाना बता दीजिए, अंता के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: मेरा नंबर आ गया क्या सर जी?
0: एकदम आ गया है जी, बोलिए।
1: आप जो मेरे मीत ना होते, मेरे होठों पे मेरे गीत ना होते।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, आप जो मेरे मीत ना होते, होटो पे मेरे गीत ना होते, वैसे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भी ना होते। सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ नीलेश बिरोकार जी का, और यदि प्रियंका जी का, यहाँ पे संध्या जी का, ज्योति जी का, मनीषा जी का, गजानंद जी का, सरोजीत जी का, राजेश कुमार जी का, जितेंद्र जी का, बीके टेलर जी का, इमरान जी का, अफताब जी का, एम डी फैज जी का, अनिल जी का, रूपचंद जी का, सरफराज जी का, पूजा भास्कर जी का। और एक चीज बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं होती है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बोलोगे तो मैं हर मतलब जितने मैसेज आते हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालते रहूंगा, अगर आपको यकीन नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेईमानी करके क्या मिलने वाला है। आपका गाना ही तो प्ले करना है, चाहे वो जो भी भेजे। आपको लगता है कि मुझे बेईमानी मतलब क्या मिलने वाला, यहाँ गाना प्ले हो रहा है, चाहे आप वो आपका गाना हो या किसी का भी गाना हो, ये अपने दिमाग से ये जो है ये सब गलत फहमियाँ प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और नहीं ऐसा होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हर मतलब हर गाने का मैं स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं भेज सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ही है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, कॉल लगाऊंगा ना नीलेश बिरोकार जी को।

0: नीलेश जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में।
1: धन्यवाद सर जी।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया।
0: बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: गाना है हम आपके है कौन, मतलब टाइटल सॉन्ग।
0: ओके सुनवा।
1: हम आपके है कौन।

मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है सर्वजीत सेठी जी का। ओके जी, और संध्या पटेल जी, हाँ अब करीब आ रही है संध्या जी। ओके जी, और प्रियंका जी हैं, महक जी हैं, एंड ज्योति जी हैं, बस सब लाइन से हैं महारथी लोग। एंड यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, रविंदर जी हैं, और अनिल कश्यप जी हैं, अफ्ताब जी हैं, अमीना जी हैं, राजेश जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। ओके जी, तो सीधे कॉल लगाते हैं सर्वजीत सेठी जी को।

0: सर्वजीत सेठी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। कैसे हैं?
1: बढ़िया मास्टर जी, नमस्ते। कैसे हो आप?
0: जी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: यहाँ सर हम भी अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, परिवार में भी सब बढ़िया है सब।
0: ओके जी, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: मुझे हक
0: है
1: तुझको जी बारिश में देखूं, मुझे हक है। सर ये भी सुना दीजिए।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

और मेरे पास सबसे पहले मैसेज आऊंगा आफ्ताब आलम जी का, और यानी कि प्रियंका जी का, ज्योति जी का, संध्या जी का, जितेंद्र जी का, इमरान जी का, सर्वजीत जी का, महक जी का, रूपचंद जी का, नीलज जी का, बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन कॉल लगाते हैं आफ्ताब जी को।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार मूडी चॉइस और कीजिए दिए गए मूड पर आधारित गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9135 84 12 32।
2: ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से यानी कि पार्ट टू यानी सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: ये रहा अंतरा,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल इसका जवाब आया हुआ है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। सबसे पहले भेजने वाली महक जी हैं और सुनना चाहती हैं गाना, लेकिन लिखी है नो कॉल, तो मैं कॉल नहीं लगाऊंगा भाई, गाना जरूर सुनवाऊंगा। और जिनको नहीं यानी ये कॉल चाहिए वो प्लीज जरूर लिख देंगे नो कॉल, क्योंकि मैं ख्वामेका आपको कॉल लगाऊंगा। मैं परेशान होता हूँ, आप भी परेशान होते हैं, अगर कॉल नहीं चाहिए तो नो कॉल जरूर लिखें, और कॉल चाहिए तो ये मेंशन ना करें, मैं जरूर कॉल करूंगा आपको। और बहुत से दोस्तों के मैसेज आए थे, जैसे कि मैं बता दूं कि महक जी और सुनीता गोप जी, संध्या पटेल जी, और भाई हमारे इमरान जी हैं, और यूरूप चंद जी हैं, ज्योति जी हैं, प्रियंका जी हैं, नंदनी माजी हैं, गजानंद जी हैं, हबीबुर रहमान जी हैं, बहुत से दोस्त।

0: क्या बात है, लेकिन यहाँ पे मैं प्ले करने वाला हूँ अगला सवाल। ध्यान से सुनिएगा और अंतरे को।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजा

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज आ चुका है, वो भी कायनात जी का। कायनात जी बहुत बहुत वेलकम है आपका। और उनके पास से है हमारे ये रूपचंद जी हैं, महक जी हैं, इमरान जी हैं, राजेश कुमार जी, अमीना जी हैं, ज्योति जी हैं और प्रमोद यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और मनीषा जी हैं, ओके जी, और जितने भी मतलब क्या कहें दोस्त, सभी का वेलकम करते हुए कायनात जी को कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में कैनाथ जी। और कैसी हैं आप?
1: दौड़ते धूपते बस शो को सुनने के लिए जस्ट अभी पहुंचे हैं।
0: अच्छा,
1: और बाकी भाई खासी ने बता दिया होगा।
0: अच्छा जी, अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है और थक गई है।
1: हाँ शायद कुछ, और मैं भूल भी गई मैंने क्या बताया था।
0: हाँ,
1: गाने की
0: आपका जो
1: बोल क्या थे, आनंद बख्शी जी ने लिखा हुआ है।
0: हाँ,
1: गाना क्या था? हाँ, क्या यही प्यार है? हाँ, यही
0: बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, अब आप इन गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये मुझे बता दीजिए।
1: एक सेकंड, एक घूंट पानी पीलू बता।
0: बताए, पी लीजिए पी लीजिए।
1: जबरदस्ती आज मीठा पान खिला दिया गया है।
0: अच्छा जी, क्या बात है।
1: हाँ हाँ, तो मुझे सुनना है।

0: वाह, बहुत प्यारा गाना है आपने गा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।
0: वेलकम जी। क्या बाजी कहना जी, छा गई आप।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी है। न देखूं तो तुझको तो कैसे बचाएं, मेरी जान जाने लगी है। तेरी चाहतों में छनकती ही जाए, न माने निगोड़ी ये पायल। मुझे बेकरारी सताने लगी है, किया इश्क ने मुझको घायल।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

बिल्कुल, इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज आया हुआ है, जवाब आया हुआ है आरजे सोनी जी का। वाह क्या बात है। और उनके बाद ये महक जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, और इमरान जी हैं, और बिंदिया जी हैं, ज्योति जी हैं, मनीषा जी हैं, अमीना खान जी हैं, ओ माय गॉड सारी फीमेल की लाइन लगी हुई है, एंड आजाद अंसारी जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, रूपचंद जी हैं, संध्या पटेल जी हैं, एमडी फैज जी हैं, और प्रियंका जी हैं, नीलेश जी हैं, अनिल कश्यप जी, ओ माय गॉड बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं, लेकिन कौन लगाएंगे।

0: बहुत बहुत वेलकम है आरजे सोनी जी। और आपका फर्स्ट राउंड में तो नंबर नहीं लगा, लेकिन सेकंड राउंड में नंबर लग ही गया फाइनली।
1: जी, फर्स्ट राउंड में थोड़ा बिजी थे, बाइक चला रहे थे इसके लिए।
0: अच्छा, ओहो, ये बात है।
1: बाइक चलाते चलाते सुन रहे थे, इसलिए थोड़ा सा देर हो जा रही थी जवाब देने में।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए तो बता दीजिए।
1: अभी मैं घर आ चुकी हूँ।
0: घर तो इतनी रात को कहाँ गई थी जी? बाइक से
1: कुछ काम था।
0: अच्छा जी, ओहो, समझ गया। चलिए फिलहाल बताइए, अंत ये जो इसका जवाब क्या है, कौन सा गाना है?
1: दैया दैया दैया रे।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: ये दिल तेरे बिन कहीं लगता है।
0: हम क्या करें, अरे तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें, सच में क्या ही बताएं। बहुत प्यारा गाना है, इंजॉय कीजिए। फिल्म इज्जत का लाजवाब गाना।

0: करें, लेकिन ये अंतरा सुनिए और जवाब दीजिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: कांटे हो या कलियां हो, बस महबूब की गलियां हो, साथ तुम्हारे चलना है, इश्क की आग में जलना है, चीर के देखो दिल मेरा, इस दिल का है नाम तेरा, दीवानगी क्या चीज है, दीवानों को बस है पता।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।
4: के दिल को तड़पा
0: है, क्या लाइन है।

0: बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। और सबसे पहला तो यानी कि कायनाथ जी का एक बार फिर से इन्होंने बाजी मार लिया है। कायनाथ जी आए है, उनके बाद रुबीना नाथ जी हैं, रूपचंद जी हैं, ज्योति जी हैं, मनीषा जी हैं, गजानंद जी हैं, इमरान जी हैं, आजाद जी हैं, अमीना जी हैं, एमडी फैज जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं मतलब, और प्रियंका जी हैं, सर्वजीत जी हैं, नीलेश जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त। ओ माय गॉड, कौन लगाते हैं कायनाथ जी को?
1: बुझा दो आग दिल की इसे।
0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और मैं कहूंगा कि क्या इस लाइन मतलब ये जो गाना प्ले हो रहा है, इस गाने का दो लाइन आप गा सकती हैं? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।

0: है, क्या गाना है और क्या आप गाती हैं, सच में दिल खुश कर दे रही हैं। इतना प्यारा आप गा रही हैं ना कि हम क्या ही बताएं। मेरे पास तो
1: होगी ना, आप में भी ऐसी रंगत आएगी
0: बिल्कुल। और दुआ कीजिए,
1: हमारी राजू साहब की कृपा है।
0: ओके,
1: इतना है।
0: चलिए इंजॉय कीजिए, सुनवाते हैं इस गाने को।
1: थैंक यू सो मच।

0: और ये रहा अगला गाने का ये अंतरा, बताइए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मन में है राधे को कान्हा जो बसाए, तो कान्हा काहे को उसे ना बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा की ये जो नैना है, जिनमें गोपियों की चैना है।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: मेरा।
1: इस बार मेरे पास मैसेज पहुंचा है सबसे पहले आरती तिवारी जी का एंड आरजे सोनी जी का। ओह माय गॉड। और यहाँ पे रूपचंद जी हैं, महक जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, आजाद अंसारी जी, अमीना खान जी हैं, एमडी फैज आलम जी, ज्योति जी हैं, रवि मोहन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, विपिन त्यागी जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, और सरफराज जी हैं, रविंदर जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं इनको आरती तिवारी।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आरती तिवारी जी सेकंड राउंड में। कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: एकदम झकास बिना फर्स्ट क्लास मजे में चक्का चक ग्रांटी के साथ हम हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ जी, तो बताइए गाना कौन सा था ये?
1: राधा कैसे ही न जले।
0: बिल्कुल ये तो गाना था, तो बताइए।
1: और मुझे एक गाना भी यही सुनना है।
0: यही गाना? ओके सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।
1: ओके थैंक यू।

0: पे सवाल करता हूँ मैं, सब तैयार हो जाइए जल्दी से।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दें कदम, सारा जहां भूल जाएं, बस नगमे तेरे प्यार की गाते ही जाएं।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और इस बार फिर से एक बार बाजी मार चुकी हैं आरजे सोनी जी। ओहो, क्या बात है जी। और उनके बाद मैं कॉल लगाने वाला हूँ इनको, बिल्कुल अभी लगाऊंगा कॉल। और उनके बाद से बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं, जरा ये भी बता देता हूँ कौन कौन से दोस्त है। ये है हमारे महक जी का, बिल्कुल सही जवाब है। और ज्योति जी का भी बिल्कुल सही जवाब है। और उनके पास है ये कौन है, विपिन त्यागी जी का भी बिल्कुल सही जवाब है। एमडी फैज जी का भी जवाब सही है। और हमारे सर्वजीत जी का सही जवाब है, बाकी दोस्तों का गलत गलत गलत है। कौन लगा लेते हैं जल्दी से इनको। जी बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम है आरजे सोनी जी।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओके जी, और आपने जवाब बताया तो बता दीजिए जवाब क्या है।
1: एहसास की हम
0: हाँ
1: कभी हाँ कभी ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब है। और आप सुनना क्या चाहती हैं?
1: रफ्ता रफ्ता वो हमारे हाथी के सामा हो गया।
0: ये तो लग रहा है कि कोई गजल है।
1: नहीं गजल नहीं है, गाना है, थोड़ा पुराना है।
0: अच्छा मैं देख लेता हूँ। रफ्ता रफ्ता
1: रफ्ता रफ्ता
0: शायद मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। एंजॉय कीजिए।

0: शायद मुझे लग रहा है कि मैंने गलत गाना प्ले कर दिया है। एक काम कीजिए, आप तब तक आप लोग जवाब दीजिए, मैं तब तक ओरिजिनल गाने को प्ले करने की कोशिश करता हूँ।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो ना जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और इस गाने को सुनकर मुझे वो गाना याद आ रहा है कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। मुझे मन का थोड़ा सा सुनवाना चाहिए। सुनते हैं थोड़ा सा इस गाने को भी, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, अरमा हो गए, सब कुछ हो गए यार। लेकिन सबसे पहला मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है इस बार, वो है अमीना खान। अमीना खान जी के बाद है यानी कि कायनात जी हैं और महक जी हैं, ज्योति जी हैं, आरती जी हैं, एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है इनका, ये जकरिया मलिक जी, अच्छा इनका भी है, और इमरान जी हैं, मनीषा जी हैं, सरफराज जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, फैज जी हैं, सरवजीत जी हैं, रविन, मतलब क्या ही बोले, बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं भाई, रविंदा जी, गजानंद जी, अकबर जी, अनिल कश्यप जी, ये तो इनका नाम ही मुझे नहीं पता है, क्या नाम है भाई, नाम नहीं पता, अंत में नंबर है इनका 56045, नाम बताइएगा जरूर। नीले जी, सुनीता गोप जी, रवि मोहर जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज, बाय गॉड। चलिए फिलहाल कॉल लगाते हैं अमीना खान जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से अमीना खान जी सेकंड राउंड में।
1: हेलो,
0: वेलकम सलाम जी, और बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
0: और शो एंजॉय कर रही है ना?
1: हाँ, मैं अभी असल में काम वाली नहीं आई ना।
0: अच्छा,
1: तो मैं बर्तन भी धो रही हूँ।
0: अच्छा,
1: और फिर भाग भाग के मोबाइल पे भी आ रही
0: हूँ। ओह माय गॉड, एक साथ दो दो काम कर रही हैं आप। चलिए कोई बात नहीं है, बताइए अभी इसका जवाब बता दीजिए पहले मुझे। हेलो, इसका जवाब हाँ बता दीजिए, जवाब बता दीजिए मुझे।
1: तू है मेरी किरण,
0: बिल्कुल सही जवाब है। और आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ आपकी पसंद का कुछ भी सुना दीजिए आज।
0: मेरी पसंद का अभी तो मेरे दिमाग में कुछ हाँ नहीं चल रहा है फिलहाल, अपनी पसंद बताइए।
1: जी, तेरे बिन भागम भाग मूवी।
0: ओके, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: बिल्कुल, अब तो अकेले जिया जाना है। फिलहाल अंतरा सुनिए और जवाब दीजिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल।

ओके, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले तो यानी विपिन त्यागी जी हैं, और उनके बाद से रवि मोहड़े जी हैं, इमरान भाई जी हैं, ज्योति जी हैं, और हमारे अकबर खान जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं। ये इतने दोस्तों की, और हाँ आरजे सोनी जी का भी, इतने दोस्तों के, और हमारे नंदिनी माँ जी का भी मैसेज आ गया है। इतने दोस्तों का सही सही जवाब आया हुआ है, बाकी दोस्तों का गलत गलत गलत गलत आया हुआ है। तो कॉल लगाते हैं।

0: भाई विपिन जी बहुत बहुत वेलकम है सेकंड राउंड के अंतरमस्ती में, कैसे हैं
1: जी? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं सर।
0: एकदम हम बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छे हैं
1: जी।
0: तो बताइए उसका जवाब बता दीजिए मुझे
1: सर। उसका आंसर था, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे
1: आज सर? सुना दीजिए, बोलता ना ध्यान नहीं आ रहा सर। चलिए आप अपनी पसंद से ही सुना दीजिए सर, कोई भी
0: अपनी पसंद से। ओहो, अपनी पसंद से मैं कौन सा सुनवा दूं? ठीक है
1: सर, एक गाना है पराया धन से, वो वाला पराया धन मूवी का निकाल लीजिए सर। वो है कि दिल हाय मेरा दिल,
0: पराया धन का
1: जी सर।
0: दिल हाय मेरा दिल
1: जी सर,
0: देखता हूँ मुझे मिल जाएगा तो जरूर। दिल हाय, हाँ मिल तो गया मुझे गाना आपका, बहुत
1: जी सर यही चलाते।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना है।

0: और यहाँ सवाल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, मैं तेरा जी भर दूं, सोचा था हाँ कर दूं, फिर काहे ना कर दी, ना कर दी, फिर काहे ना कर दी, मैं सदके जान कर दूं, मैंने बदल दिया इरादा, जुम्मा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: गली की। इस बार बहुत से दोस्तों के जवाब आए हैं, बहुत और सबका सही जवाब आया हुआ है। सबसे पहले ज्योति खटवड़े जी, हाय क्या बात है। उनके बाद हमारे ये सुनील कुमार जी हैं, और भाई इमरान जी हैं, महक जी हैं, विपिन त्यागी जी हैं, रवि मोहरे जी हैं, और क्या नाम है इनका, नितिन जी हैं, अमीना जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो फिलहाल इन्हीं को कॉल लगाते हैं ज्योति जी को। ज्योति जी, बहुत मेहनत किया आपने और फाइनली वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, नंबर लग ही गया आपका फाइनली सेकंड राउंड में। उस समय से जब से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, नंबर वन सबसे पहले आप ही का आया था, आप लकी कॉलर बनी थी।
1: और उसके बाद क्या, अभी
0: नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो अभी और हो सकता है ना। बिल्कुल, तो बताइए कौन सा इसका जवाब पहले बता दीजिए।
1: जुम्मा।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा?

0: और यहाँ ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। लोनावले में चिक्की खाएंगे, वॉटरफॉल पे जाएंगे, खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। हाँ भी करता ना भी करता दिल मेरा दीवाना, दिल भी साला पार्टी बदले कैसा है जमाना।
0: अच्छा।
1: फोन लगा तू अपने दिल को जरा, पूछ ले आखिर है क्या माजरा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल।

0: मोहब्बत क्यों।
1: बिल्कुल, मेरे पास मैसेज आया सबसे पहले शमशाद हुसैन जी का है, और अमीना जी हैं, अजय भगत जी हैं, सुनील कुमार जी, ज्योति जी हैं, इमरान जी हैं, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी हैं, बाबूलाल अंजना जी हैं, नितिन सक्सेना जी हैं, यहाँ सुनीता गोप जी हैं, सर्वजीत जी हैं, नंदनी माँ जी हैं, और रवि मोहड़े जी हैं, और यहाँ पे संजय सहनी जी हैं। मतलब बहुत से दोस्तों का ऐसे जवाब पहुँचा हुआ है, तो कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है शमशाद हुसैन जी, कैसे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अपने बताइए।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। तो बताइए जवाब क्या है?
1: जवाब ये क्या बोलती तू, सुन सुना आती का खंडाला,
0: आती है क्या खंडाला? जी बिल्कुल, लोना में चक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे, खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे, हम भी करता ना भी करता दिल मेरा दीवाना, दिल भी साला पार्टी बदले कैसा है जमाना, फोन लगा तू अपने दिल को जरा पूछ ले। यस, सही गाना आपने पहचान लिया। तो आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं हीर रांझा का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: वो कौन सा गाना?
1: पुराने वाले हीर रांझा का हमने भेजा है आप पे, याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया
0: जरा सा। मतलब हीर रांझा का मिलो ना तुम तो हम घबराए।
1: नहीं नहीं नहीं, रफी साहब का है, रफी साहब का।
0: तो दिखना पड़े हीर रांझा सॉन्ग, अब मुझे निकालना पड़ेगा रफी साहब का कौन सा गाना।
1: एक मिनट मैं भी बता रहा,
0: बताइएगा तब ना।
1: तेरे कूचे में तेरा दीवाना।
0: अच्छा, तेरे कूचे में
1: तेरे। हाँ, और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, बेचारे हमारे इमरान भाई बहुत देर से परेशान
0: है। हाँ, तो उनका स्पेशल कॉल में अब जाने वाला है, बेचारे का नंबर नहीं लगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत से दोस्त ये
1: मुझे उसकी तरफ से काफी हमदर्दी हो रही है, बहुत देर से वो लगा हुआ है
0: बेचारे, उनका नंबर आ जाएगा स्पेशल कॉल में, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल यानी कि पारदर्शिता है। अब चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ अमन भाई।
0: बिल्कुल कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए इस गाने को। ओके
1: ठीक, ओके।

0: और ये रहा सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: भोली मोहब्बत की ये खुशबुएं हैं हवाओं में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो, वो यादें मेरी तुम अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यानी कल है यानी संडे स्पेशल में मूडी चॉइस, और मूडी चॉइस में जो यानी कल का थीम रखा गया है वो नंबर वाले गाने, जैसे 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 हो तुम, 1 2 3 4, प्यार चाहिए कितनी बार, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मतलब नंबर वाले गाने कल प्ले होने वाले हैं।

बिल्कुल ओके जी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और इस बार फिर बाजी मार चुकी हैं कायनात जी, बहुत बहुत वेलकम है। उनके बाद आरजे सोनी जी भी हैं और हमारे ये क्या नाम है, अजय भगत जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, ज्योति जी हैं, अमीना खान जी हैं और नीलेश विरोकार जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, इमरान भाई जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, नितिन सक्सेना, रवि मड़े, मतलब सभी।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है वीनर साहिबा। आज वीनर बन गई हैं और अब कोई भी गाना सुन सकती हैं, कोई भी।
1: ओके, बारिश बहुत प्यारी हो रही है, गाना तो मैं वही सुनूंगी जो लिंक था, मतलब जो भी था।
0: हाँ, तो बता दीजिए कौन सा।

0: अब ज्यादा गा देंगे मॉडल जाएगा।
1: कोई बात नहीं, चलिए सुनवाते एंजॉय द ट्रैक। और फिलहाल मैं अभी सवाल भी कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में मैं आप सबको डिस्टर्ब ना करूँ। आखिरी सवाल है ये, उसके बाद स्पेशल कॉल करूंगा।
2: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कुर्ती तेरी छेंडती, दुपट्टा तेरा लहरिया, हिंदुस्तानी रानी बन जा, राजा की तू गोरिया। मैं कुड़ी पंजाब दी, मेरा रेशम दा रुमाल वे, जिंदगी भर भूलेगा ना, कर दूंगी वो हाल वे।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

बहुत ही प्यारी फरमाइश। ओके, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले रवि मोहड़े जी, अच्छा जी, अजय भगत जी हैं, ज्योति जी हैं, अमीना खान जी हैं, आरती जी, अजय कुछ जी हैं, रुबीना नाथ जी, इमरान जी हैं, समसाद जी हैं, अकबर खान जी हैं, सर्वजीत जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। लेकिन सीधे कॉल लगाता हूँ मैं यहाँ पे रवि मोहड़े जी को।

0: रवि मोहन जी आपको बधाई इसलिए हो क्योंकि आप आखिरी सवाल के विनर बने हैं।
1: अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी बताइए कैसे हैं। और हाँ एक सवाल आपने अच्छा पूछा है कि साल के 12 महीने, हाँ देखिए जो भी नंबर है गाने में, कोई भी नंबर हो चाहे वो एक से लेकर 100 तक माने हजारों तक यानी कुछ भी हो, है ना, वो नंबर आना चाहिए, मतलब गाने में नंबर आने चाहिए।
1: अच्छा अच्छा हाँ हाँ।
0: वो चाहे वो साल के 12 महीने हो, है ना, चाहे 1, 2, 3 हो, चाहे वो 100 साल पहले हो, चाहे मतलब
1: हाँ गिनती गिनती आना चाहिए,
0: गिनती
1: मतलब?
0: वो कोई भी हो, चाहे एक से हजार या लाखों भी हो, जैसे यानी लाखों आशिक मर जाते, मतलब समय रहे ना, गिनती आना चाहिए, कुछ भी उसमें गिनती वाले गाने हो, मतलब नंबर वाले, अंक वाले, डिजिट वाले गाने कल प्ले होने वाले हैं। ओके
1: जी जी, तो बताइए कितने बजे से सर?
0: अरे भाई
1: वही शाम वाले,
0: वही शाम के शो में होगा ये। और जो
1: दो से तीन, मतलब कोई स्पेशल प्रोग्राम आपका तो नहीं? वंशिका जी का आज प्रोग्राम सुना मैंने, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा उनका भी।
0: जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर आतवार को 11 बजे से भी प्रोग्राम होता है ना, एक वो यानी वर्ड मस्ती, तो वहाँ पे 10 शब्द दिए जाते हैं, अभी शब्द डिसाइड नहीं हुआ इसलिए अभी आपको नहीं बताया जा रहा है, है ना, तो वो 10 आपको शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों से एक शब्द से 3-3 गाने प्ले होते हैं, वो 11 से 2 के बीच होता है, है ना। और उसके बाद बता दूं कि शाम के 6:30 बजे से जो मेरा प्रोग्राम आएगा उस प्रोग्राम में,
1: वो तो सर मुझे पता है, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ आपसे, वो तो पता है, लेकिन आपका हर संडे कुछ ना कुछ, जैसे पहले संडे में लास्ट संडे में बदलता है, ऐसे मैं ये पूछना चाह रहा था, और कुछ नहीं सर जी बस।
0: ओके तो अब बता दीजिए, आप इसका जवाब बताइए।
1: तेरा रंग बल्ले बल्ले।
0: ओके और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना तो सर आप बहुत अच्छा सुनाते हो, इसलिए मैं हर जवाब में लिखता गया कि आपकी पसंद, या फिर जो एक दो गाने दिए आपके हिसाब से जो भी अच्छा।
0: आपने मुझे अब आपका देखना पड़ेगा कौन कौन से गाने आपने भेजा है।
1: पहले भेजे थे।
0: अच्छा ये आपने भेजा, क्या मिली है ऐसे लोगों से, मैं प्ले कर दूं?
1: हाँ सर ये भेजा था मैंने, पर अभी नहीं भेजा था मैंने, फिर आपकी पसंद लिख दिया था।
0: वो कोई बात नहीं, जब आपने भेज दिया तो सुनवाते हैं, इसी को सुनवाइए, सुनिए।

और रवि मौर्य जी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कैनाथ जी कि सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, और जिसका भी है वो उनको स्पेशली थैंक यू मेरी तरफ से बोल दीजिए, बोल दिया। और अब स्पेशल कॉल लगाता हूँ सबसे पहले सर्वेश भगत जी को।

0: ओके जी सर्वेश भगत जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: और तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: माँ कसम फिल्म का गाना है लचक लचक लच तेरी कमरिया वाला गाना,
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: अगला कॉल लगा लेते हैं जल्दी से। जी आपका बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में। आपका शुभ नाम?
1: हेलो।
0: जी हेलो, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम है प्रमिला जी।
0: अच्छा प्रमिला जी, बहुत बहुत वेलकम है।
1: हाँ।
0: ओके, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: प्यार से प्यार का वादा रहा।
0: मतलब
1: नहीं।
0: हाँ हाँ,
1: वादा रहा प्यार से प्यार।
0: अच्छा, ओहो, वादा रहा।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, वादा रहा प्यार से मैं
1: प्यार का।
0: ओके
1: अब ना हम होंगे जुदा।
0: इंजॉय कीजिए।

ओह माय गॉड, यहाँ बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अब लगता है मुझे जाने में बहुत देर हो जाएगी, या तो मुझे भींग कर जाना पड़ेगा। जबरदस्त बारिश,

0: जी बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। आपका शुभ नाम?
1: जी राजा राम।
0: राजा राम जी बहुत बहुत वेलकम है आपका। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं गाना।
0: हाँ हाँ।
1: कुदरत ने सनम तुमको।
0: कुदरत ने सनम तुमको, क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुमको, निकालता हूँ अगर मिल जाए तो जरूर सुनवाऊंगा। मिल गया, लग रहा है मुझे मिल गया। ओके जी, तो सुनवाता हूँ। एंजॉय कीजिए इस गाने को। ओके धन्यवाद।

0: जी आपका बहुत बहुत वेलकम है जकरिया हिंद चौधरी जी, स्पेशल कॉल में कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर।
0: तो आज आप स्पेशल कॉल में क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आप बताओ, आप ठीक हो?
0: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे? आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: ऋषि कपूर का है, ऋषि कपूर का है सर, ह्यूमन हार्ट सर, एक दिन की यही ख्वाहिश है।
0: सुनवा दो।

0: अकबर खान जी बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं?
1: बढ़िया मुझे।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज नया गाना सुना दीजिए।
0: तो बता दीजिए।
1: कुमार सानू का है जी, अनुराधा पौडवाल कुमार सानू का।
0: हाँ, गाना
1: फिर

0: तेरे हम, ये सुना दिया जी।
1: जरूर सुनाएंगे जी। और आजकल क्या कर रहे हैं?
0: काम कर रहे हैं जी।
1: ओके जी, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं?
0: वही चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, चूड़ी बनाने वाला काम कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, गाने एंजॉय कीजिए।
0: 16 तारीख को आपके उधर आ रहा हूँ मैं।
1: अच्छा, आइए आइए, वेलकम है आपका।
0: बिहार की तरफ आ रहा हूँ, सिवान की तरफ।

0: बहुत बहुत वेलकम इमरान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। फाइनली आपका फाइनली नंबर आ ही गया है कि नहीं? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है इस पर, ये स्पेशल कॉल में।
1: स्पेशल कॉल आती है मेरे लिए, मेरा नंबर कहाँ लिखता है?
0: तो भाई
1: अगले हफ्ते भी स्पेशल कॉल,
0: मतलब यानी कि आपसे पहले भी अब लोग भेजते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि नहीं? यहाँ तो मतलब
1: कितनी, हाँ वो पता है मेरे को, मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपको भी पता है।
0: जी हमें भी पता है,
1: सेकंड का गेम होता है वो, मेरे को पता है सेकंड सेकंड का गेम होता है।
0: हाँ, और मैं आपको ये भी पता
1: है, हर बंदा जीत जाता।
0: जी जी, और सेकंड सेकंड में लोग जीतते हैं, लेकिन फिर भी लोग का ये कहना है कि मैं यहाँ चीट करता हूँ, गलत करता हूँ। भाई मैं गलत क्यों करूँगा?
1: नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरे को पता है वो सेकंड सेकंड का गेम होता है। अगर कोई दूसरा मैसेज करता वो तो सबसे नीचे चले जाता।
0: जी बिल्कुल,
1: पहले पे होता वो सबसे नीचे जाता, क्योंकि मैं एक मैसेज का दूसरा मैसेज नहीं करता।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत से लोगों की शिकायत भी रहती है सेकंड का गेम होता है, किसका नेट फास्ट चल गया, मैसेज चला गया।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए हर किसी को
1: मैं जानता हूँ,
0: हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है कि नहीं?
1: अरे कोई बात नहीं, जब उसमें नहीं लगा तो स्पेशल कॉल हमारे लिए तो है, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और क्या चाहिए हमारे को, तो स्पेशल कॉल मिल रही है।
0: सही बात है जी। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: मैं गाना तो सुनूंगा, लेकिन वो भाई जो बता रहे थे मेरे बारे में, वो भाई का नाम मेरे को याद नहीं है
0: जी।
1: क्या नाम था भाई?
0: उनका नाम है शमशाद हुसैन जी था, और शायद इसहाक हुसैन जी थे।
1: हाँ जो भी थे, तो उनको ये गाना मेरे उस पर डेडिकेट कर देना। गाना जो है ना, गाना है सोनी महिवाल मूवी का है, गाना है सोनी मेरी सोनी। अच्छा। ये गाना और कल के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, कल जो ये प्रोग्राम होगा नंबर वाला 1 2 3 जो भी, तो उसमें अगर कोई शब्द मेरा है, अगर विनती के शब्द लेटर का इंग्लिश में आएगा तो चलेगा?
0: हाँ हाँ, चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, वो हाँ हाँ आएगा, बिल्कुल चलेगा, है ना?
1: कल मैं गाना भेजता हूँ, आप कोशिश करता हूँ।
0: चलिए ओके, एंजॉय,
1: गाना भी बढ़िया भेजूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये गाना भाई को डेडिकेट कर देना, जो भाई ने मेरा नाम लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हो गया डेडिकेट, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, और आज मैं आखिरी कॉल लेने वाला हूँ और ये सुनील कुमार जी को ले लेता हूँ मैं। वैसे हर किसी को कॉल लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत से दोस्त यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी, बांका बिहार से।
1: जीने का बहाना नहीं,
0: हेलो,
1: मरने का ठिकाना
2: भैया।
0: जी जी बोलिए, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: मरने का
0: ठिकाना बताइए।
2: हेलो,
0: हाँ बोलिए, स्पेशल कॉल में क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: जी वो गाना है 18 वर्ष की तो होने को आई। अच्छा। कौन पूछेगा सचन कुछ कर ले। जी सर,
0: 18 वर्ष की।

बिल्कुल भाई, हम चाहते हैं हर किसी को खुश करना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास समय की कमी है ना। एक तो मुझे पानी में भींग के जाना पड़ेगा, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन चलिए कॉल लगाते हैं एमडी फैज जी को भाई।

0: बहुत बहुत वेलकम है एमडी फैज जी।
1: सलाम
0: सलाम, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज क्या सुनवाइएगा? एक फिल्म हम सोचे हुए थे, फिल्म का नाम है लैला।
0: अच्छा,
1: अनिल कपूर और सुनील दत्त का है इसमें।
0: अच्छा,
1: आज सहे महफिल।
0: आज सहे महफिल,
1: सरे महफिल।
0: आज सरे महफिल, रोम लैला। मैं चेक कर लेता हूँ मुझे मिल रहा है कि नहीं, शायद मिल रहा है। ओके, तो सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।
1: बोलना था आपको।
0: जी जी जी जी, बोलिए बोलिए।
1: बोलना था ये, कम से कम शनिचर एतवार के दिन तो कुछ गाना ज्यादा प्ले किया कीजिए।
0: क्या करूं?
1: और आपका शायद 12 बजे दिन में से जो शुरू होता है म्यूजिक एक्सप्रेस, उसमें नया गाना चलाइए। सब गाना तो दिन भर चलता ही रहता है, 90 वाला, 2025-26 वाला गाना सब चलाइए।
0: ओके ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।

0: आपसे हुजूर बरखुरदार डरते हैं कि हम तो इन्हीं से प्यार करते हैं कि हम तो इन्हीं।
1: और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम साढ़े नो, अरे कल तो आतवार है ना, तो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जितना हो सके प्लीज सुनते रहें रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बाय बाय।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो,
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरी तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

0: दोस्त बन के।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।